0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: 4 beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
0: Na thame, na ruke. Classic nagme. Aapke apne Leica Gold par.

तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत समझाना पड़ेगा।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी दे देती हूँ।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जा।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोलख होवें लख होवें लखवीस, लख लख गेड़ा आखियें, एक नाम जगदीश।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान।

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: London, get ready for an unforgettable night.
5: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11.
4: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11, 11.
4: Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11. Danube Properties.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
9: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-776-333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज What's your travel mantra?
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: Holloway. There is minor delays elsewhere to the line. And that's the latest traffic and travel.
1: Years are more like we do now. By 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
2: Yep, so we need everyone to use 28 litres less water every single day.
3: How? Well, if everyone spent 2 minutes less in the shower, that'd do it. Mm.
2: But we're not just talking households. We're talking the water industry and businesses too. Everyone has to do their bit.
1: Because when we work together,
2: it all adds up.
4: Come on, you lot. Search Let's Save Water.
5: Like a gold is 5. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: 0730098823. नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेशन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730098823
10: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
11: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
13: The Cycle of Love from executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
14: I left behind everything I knew.
13: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
14: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
13: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
15: Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget. Call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Like a goat. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल travelhub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: travelhub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: माया भाईनी મોજવાણમાં થઈ જાઓ રેડી માં કૃપા ફાઉન્ડેશન્સ યુકે પ્રેઝન્ટ્સ ભવ્ય ડાયરો માયાભાઈ આહિર જયશ્રી ભોજવિયા અને નિર્મળસિંહ ઝાલા સાથે 26 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ
4: વેન્યુ ફર્સ્ટ ફ્લોર યુનિટ 3 10 સ્ટોન ફીલ્ડ વે સાઉથ રાઇસલીપ HA40JS
3: ટિકિટ્સ 30 40 અને 50 પાઉન્ડ્સ લાઇટ રિફ્રેશમેન્ટ ઇન્ક્લુડેડ
4: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509
0: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड सेंटोसा आइलैंड बाटू केव्स जेंटिंग हाइलैंड्स बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन फ्लाइट्स फोर स्टार होटल्स इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956-154-846
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
6: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923-227274 बुक योर टेबल टुडे
7: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता
8: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर
9: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो
8: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
10: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल
11: लेट्स सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन विद डिलीशियस एथनिक नमकीन वैरायटीज ऑफ जैमिन स्नैक्स अलोंग विद इट्स खाकरा मैंगो पल्प सोन पापड़ी एंड पिकल्स
10: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू गणपति बाप्पा मोरिया
12: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajol. Like
13: Time for Listener of the Week.
14: Good morning. My name is Sunika and I have been listening to Like a Radio Gold since it was called Dilse Radio. I've been listening to the radio since I was 8 or 9 years old and I am now 15. My grandma first introduced me to it, as I'd always hear her listening to it in the kitchen, and my brother's name is Dil. When I was only 9 years old, I applied for a job at the radio company, and I got invited to take a tour of the radio company. I was so excited, and I still look back on the experience. Thank you.
15: Hey, Jai Jai Shiv Sha.

0: Mika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
9: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
11: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in three explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM. Exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
12: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
13: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
15: I left behind everything I knew.
14: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
15: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
14: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Leica Gold.
16: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: बाला सुब्रमण्यम और लता जी की आवाजों में था ये गाना जिसे आपने अभी सुना, आपके मन पसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स पर। और उससे पहले हमने आपको हीरो फिल्म का गीत सुनवाया जिसमें लता जी का साथ दे रहे थे मनहर उदास। और लीजिए, दो गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और आज रवि शर्मा शो में ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है। स्वागत है सभी लोगों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज ढेर सारी बधाइयां भिजवा रहे हैं क्योंकि आज खास दिन है, आज गणेश चतुर्थी है। तो जो भी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं सभी को मेरी ओर से ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं एंड गणपति बप्पा मोरिया। और उनके बारे में ज़रूर बात होगी, आज बहुत बड़ा दिन है। गणपति देवों के देव हैं जिनका नाम लिए बिना किसी भी शुभ काम की शुरुआत हो ही नहीं सकती, तो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल गणेश चतुर्थी की आप सभी को मेरी ओर से ढेरों बधाइयां।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Hey, Em, still up for that hike?
3: Yep, count me in.
2: Or we could check out that new brunch place.
3: Sounds good.
2: Or what about...
3: Let's do it.
4: When you feel your best, you're up for anything. With Boots trusted healthcare advice, services and treatments, you'll stay on top of your health, ready to take on whatever the day throws your way. And with buy one, get the second half price on healthcare, including cough and cold treatments, you can really afford to.
5: Give it some Boots.
4: Offer ends 3rd of November 2026. Mix and match across selected range. Cheapest item half price, subject to availability.
6: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
7: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
8: This part of the show is brought to you by ये रिश्ता क्या कहलाता है, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
11: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected. London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
12: Dil ne ye kaha hai dil se
13: bole chudiya.
11: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: We're finally going home for the wedding.
15: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
14: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
15: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
14: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
15: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
14: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
16: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by
5: like a mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
17: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
18: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
19: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
20: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
21: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: वैसे तो मदन मोहन ने बहुत ही खूबसूरत स्लो और रोमांटिक काइंड के गाने बनाए हैं, लेकिन जब ये गाना सुनती हूँ तो मुझे ये यकीन हो जाता है कि जो कलाकार होता है वो वाकई में कलाकार होता है। उसे आप किसी भी तरह का गाना दे दीजिए, वो अच्छा बनाकर ही देता है। ब्यूटीफुल गाना आज भी पॉपुलर है, मेरा साया फिल्म से लिया, और आप सब मेरा साथ दे रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज इस शो में एक बार फिर से ऋतु शर्मा है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। आज फिर से रवि शर्मा जी को शायद कहीं कोई काम आ गया है तो वो नहीं आए हैं, इसकी वजह से आज इस शो में मैं आपका साथ दे रही हूँ और 1 बजे तक देती रहूंगी।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो हर्षद लिम्बानी जी हमें गणेश चतुर्थी की बधाइयां भिजवा रहे हैं, आपको भी गणेश चतुर्थी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो जी हमारे साथ राजेश जी हैं जो कहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता का आगमन हो, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको भी एंड गणपति बप्पा मोरया। अनिल सोनी जी वियाना में सुन रहे हैं, क्रॉयडन से महेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं, अरुणा भूपेंद्र पटेल हमें सुन रही हैं, अर्जुन जी हैं, मालती जी हमारे साथ हैं, गणेश चतुर्थी की आपको भी बहुत बधाइयाँ। हरीश खत्री जी, हंसा वोरा जी, हेतल सोलंकी, मृदु जी, भरत कंगाराम जी एंड भारत से हमारे साथ जुड़े हैं गिरीश जी जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, और आपने बहुत सुंदर गणपति प्रतिमा स्थापित की है और आपने उसकी फ़ोटो भी भेजी, और बस ये कहूँ कि गणपति हर रूप में सुंदर ही लगते हैं, और क्या बात है, बहुत सुंदर आपने सजावट की है, बहुत अच्छा लग रहा है। जासू जी स्वागत है आपका, और जितने भी साथी जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय हो जाता है आपको आज के प्रमुख समाचार सुनवाने का।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज आपको सुनवाते हैं देश विदेश, खेल और मौसम से जुड़ी हुई खबरें देश और दुनिया की। सबसे पहले भारत से खबर आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक संबोधन के दौरान घोषणा की है कि 2029 से पहले देश के कम 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को लागू कर दिया जाएगा। उधर पश्चिमी बंगाल में बिना मान्यता प्राप्त 252 यानी कि 252 अमान्य मदरसों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है और 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की अगली किश्त के रूप में 1,835 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी है। उधर ओमान के पास एक जहाज पर हमला हुआ है जिस पर 14 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है और एक लापता नागरिक की खोज अभियान अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय शांति और व्यापारिक समझौतों को लेकर मिस्र के राष्ट्रपति और ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम द्विपक्षीय बातचीत की है। खेल जगत से आपको समाचार बताते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 72 यानी कि 72 रनों से हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है, और भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से पराजित कर मेल जूनियर एशिया कप का खिताब बरकरार रखा है और जूनियर वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की की है। भारत के 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून की विदाई से ठीक पहले उत्तर भारत यानी कि दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और मध्य पूर्वी राज्यों सहित 23 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश जो कि 82-85 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आंधी भी चलने की चेतावनी का अलर्ट जारी किया है। और आज 14 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर यानी कि 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और आज देश भर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है। बप्पा की प्रतिमाएं पंडालों और घरों में स्थापित की जा रही हैं और साथ ही साथ आज कुछ जगह पर हरतालिका तीज का पारंपरिक त्योहार भी श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कल मनाया और कुछ लोग आज हरतालिका तीज का त्योहार आज मना रहे हैं। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए और अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी और दे दें जिसके बारे में काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये समय निकट आ रहा है। यानी कि लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड पार्टनर्स सनातन इवेंट्स के साथ हैं, जो आपके लिए लाए हैं दिवाली स्टोरी एट ओवो अरीना ऑन संडे 27 सितंबर। डोर्स खुलने का टाइम है 4:30 PM, जहां पर एक स्टूडेंट प्री शो होगा पहले 5 बजे से 5:45 तक, और उसके बाद मेन परफॉर्मेंस की जाएगी जो है 6:15 से स्टार्ट होकर 9:30 तक चलेगी। आपको बता दें कि इस सब को क्रिएट किया है, डायरेक्शन प्रोड्यूस इसको प्रोडक्शन डायरेक्शन किया है नितिन पालन MBE ने, और इसमें जो डांस परफॉर्मेंसेस आपको दिखाई जाएंगी उसे कोरियोग्राफ किया है रोहन और श्रुति शाह ने। ये इंग्लिश में एक नाटक है, इंग्लिश में इसमें रामायण दिखाई जाएगी 4 चैप्टर्स में। कुछ गाने भी होंगे, बहुत खूबसूरत गाने होंगे जिन्हें बड़े बड़े जाने माने सिंगर्स ने गाया है, और इसमें फुल इंटरनेशनल कास्ट परफॉर्म करेगी। यानी कि कुल मिलाकर ये एक अमेजिंग शो होने वाला है। अगर आपने अभी तक अपने टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो आप www.diwalistory.com पर जाकर अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं और इस अनोखे नाटक का, या कहूँ इस अनोखे शो का जिसमें रामायण दिखाई जाएगी, अपने बच्चों के साथ देख कर आने का आनंद उठा सकते हैं। तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कराइए। याद दिलाती हूँ, www.diwalistory.com पर जाकर आप अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: ये गाना हमेशा नवदुर्गे की याद दिलाता है जो आने ही वाली है। और आप जानते हैं कि विंटर की जो नवदुर्गे होती हैं उसमें रास गरबा डांडिया का अलग ही रंग चढ़ता है। अब देखिए त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, सबसे पहले गणपति ही आते हैं। हर पूजा में भी गणपति की ही पूजा की जाती है, हर शुभ काम से पहले गणपति जी को ही याद किया जाता है। और देखिए जब त्योहारों का सीजन शुरू होता है तो सबसे पहले गणपति ही आते हैं। और जब गणपति गणेश महोत्सव शुरू होता है तो लगता है कि हाँ अब त्योहारों का सीजन आ गया और अब एक दो महीने अच्छे से बीतेंगे और ये टाइम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कल्याण जी आनंद जी का शानदार म्यूजिक था इस गाने में। और आपको बता दें कि इस फिल्म में म्यूजिक के लिए कल्याण जी आनंद जी को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कैटेगरी। क्या बात है, और गाने भी कमाल के थे। और ये फिल्म नूतन की कुछ क्लासिक फिल्मों में मानी जाती है। वैसे नूतन बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं और उन्होंने कुछ फिल्में ऐसी की हैं जो बहुत ही शानदार हैं, और ऐसे ही उन्हें एक अच्छी अभिनेत्री नहीं कहा जाता। और आप सबने इस गीत को बहुत पसंद किया है, ढेरों मैसेजेस मिले हैं। थैंक यू इमरान, आप हमारा साथ दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग। पूरन कपूर जी जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हैं। और आंटी जी कहती है, रितु अब आप मुझे कंफ्यूज कर रही हो। आंटी जी कैसे कंफ्यूज कर रही हूँ, कहती है ये बताओ पहले आज सैटरडे संडे है क्या वीकेंड है क्या आज वीकेंड नहीं है, आज मंडे है। लेकिन देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबको मेरी पहचान हो गई है वीकेंड से, मतलब मेरी आवाज़ है तो आपको लगने लगता है कि वीकेंड है। और क्यों ना होगा, पिछले 8 सालों से जो वीकेंड पर मैं आ रही हूँ तो एक पहचान बन गई है, तो अच्छी बात है। थैंक यू, मेरी उपस्थिति आपको वीकेंड का एहसास कराती है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वीकेंड पर हम सब एक्स्ट्रा खुश होते हैं, पता नहीं क्यों वीकेंड पर हमको नॉर्मल डेज से ज़्यादा काम पड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम वीकेंड पर बहुत खुश होते हैं कि आज तो वीकेंड है, कोई टेंशन नहीं, होता है ना ऐसा। चलिए आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, मज़ा आ रहा है। थैंक यू, आपका ये मैसेज मिला है, कौन है जिन्होंने कर दी ना गड़बड़, नाम नहीं लिखा है। अरे नाम लिखो तो मुझे पता चलेगा कि किसने मैसेज भेजा है। जब भी मैसेज लिखो ना निजी अपना प्यारा सा नाम लिख दो, कितनी देर लगती है ना, तो नाम जरूर लिखिए। अमिता जी गणेश चतुर्थी की आपको भी ढेरों बधाइयां। भानु जी आपको भी स्वागत है। सुजीत जी स्लाव में सुन रहे हैं एंड रानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। एंड हसुमती जी बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी आपका भी बहुत स्वागत है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। लाइका गोल्ड हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल।
0: तो अगर हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ होल ट्रैवल को कांटेक्ट कर सकते हैं, दुबई के लिए अच्छी डील्स आपको मिलेंगी। उनका फ़ोन नंबर है 0208-574-8410 और साउथ होल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: It's happened again, Jackie. I only went in to replace my mascara, but I just had to try a lip stain and a face cream and that hair oil from Social. And once I'm here, I'll just...
3: There's nothing like finding your new favourite and your other new favourite and your other new favourite, which is why Boots curates the best of beauty, from your favourite brands to the latest trends. With expert guidance on hand, you can be sure to find what works for you. And with save up to half price on Feel Good Beauty, you can really afford to. Give it some Boots. Offer ends 20th of October 2026, subject to availability.
1: Leica Gold is 5.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place.
7: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. Danube 11, 11. 11.
10: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
11: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
10: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
11: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सेप्टेम्बर.
12: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
11: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो नेटवर्क.
13: London, get ready for an unforgettable night.
14: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
13: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
14: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
13: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
14: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
13: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner, Leica Radio Network.

0: सानू मलिक के म्यूजिक पर इम्तिहान फिल्म से लिया था ये गाना। कुमार सानू की आवाज आपने सुनी एंड विजय गुडूरी जी थैंक यू, आप गाड़ी में है हमारा साथ दे रहे हैं, स्वागत है आपका।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए and 166 बांग्लादेशी टकास।
1: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 103.4 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colours TV and Jio Hotstar.
5: माया भाईनी मौजमाणवा थई जाओ रेडी। माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो। माया भाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज।
6: वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS।
5: टिकट्स 30, 40 and 50 pounds। लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड।
6: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772 287 509।

0: Satco Microwave Food.
1: Two businesses.
2: Same town.
1: Same service.
2: One appears on page one of Google.
1: The other doesn't.
2: Guess which one gets the customer?
1: The truth is brutal.
2: The first page of Google gets the business.
1: Everyone else gets what's left.
2: So here's the real question.
1: When your customers search for what you sell, do they find you?
2: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
1: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: व्हाट फूड में डिनर प्लान्स? थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटवुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
5: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम

0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
3: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
4: Wake up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a

आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। 11:03 हुए हैं और ये समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। आज हम सब गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश केवल प्रथम पूज्य ही नहीं बल्कि बुद्धि, संयम, दूरदर्शिता के प्रतीक हैं। भगवान गणपति हो, कृष्ण हो, राम हो, सभी के जीवन से जुड़े जितने भी प्रसंग हैं, वो सब कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और उन सभी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को सुधारने में, जीवन को सरलता से जीने में मदद करती हैं। इसलिए आज एक ऐसा ही प्रसंग सुनाने वाली हूँ, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, तो गणपति के जीवन से जुड़ी एक कथा जो शायद आपने सुनी हो, शायद ना भी सुनी हो। सुनाती हूँ एक छोटी सी कथा या प्रसंग कह लीजिए। जब महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी है, जब उन्होंने संपूर्ण महाभारत महाकाव्य की रचना करने का विचार किया, तो उसके लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके उनके द्वारा बोले गए श्लोकों को जल्दी से जल्दी, शीघ्रता से सही सही लिख सके। उन्हें कोई नाम सूझ नहीं रहा था, इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति सुझाएं जो मेरे श्लोकों को सही सही तरह से लिख सके। ब्रह्मा जी बोले, श्री गणेश से अच्छा कोई और इस काम को कर ही नहीं सकता, आप श्री गणेश के पास क्यों नहीं जाते हैं? और ब्रह्मा जी की बात मानकर महर्षि वेदव्यास गणपति के पास पहुंचे। गणपति जी ने उनकी बात सुनी और कहा, हाँ ठीक है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी। और वो शर्त थी, उन्होंने कहा, हे मुनिवर, जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप बोलते बोलते रुक गए तो मैं वहीं लिखना छोड़ दूंगा। वेद व्यास जी ने गणपति की शर्त सुनी। गणपति बुद्धिमान तो थे ही, लेकिन वेद व्यास जी भी कम नहीं थे। उन्होंने भी एक शर्त रख दी। वो बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त तुमको माननी होगी। गणपति बोले, मुझे स्वीकार है, बताइए मुनिवर, मुझे क्या करना होगा? तो वेद व्यास जी बोले, शर्त यह है कि जब तक आप मेरे प्रत्येक श्लोक का अर्थ सही सही ना समझ ले, तब तक आप उसे नहीं लिखेंगे। गणपति जी ने मुस्कुरा कर ये शर्त स्वीकार कर ली और शुरू हो गया महाभारत को लिखने का कार्यक्रम। लेकिन लिखते लिखते और श्लोक बोलते बोलते एक समय ऐसा आया कि जब गणपति जी लिखते जा रहे थे, अचानक से उनकी कलम टूट गई। कलम जो उस समय मोर पंख का यूज किया जाता था लिखने के लिए, उसकी नोक टूट गई। अब नियम के अनुसार गणेश जी अगर रुकते तो उन्हीं की शर्त टूट जाती, इसलिए उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने दांत का एक हिस्सा तोड़ा और तुरंत उसे शाही में डुबोकर लिखना कंटिन्यू करा। और तभी से गणपति एक दंत कहलाए। जब भी वेद व्यास जी को थोड़ा आराम चाहिए होता था, क्योंकि गणपति तो लिखते ही जा रहे थे और वेद व्यास जी को श्लोक सोचने के लिए समय चाहिए होता था, तो वेद व्यास जी कठिन
श्लोक बोलते थे ताकि गणपति को वो श्लोक समझने में समय लगे। लेकिन विद्या बुद्धि के दाता तो गणपति ही है, उन्हें तो आप कुछ भी कह लीजिए, उन्हें क्या समझने में टाइम लगेगा। और इस तरह से वो फटाफट फटाफट लिखते गए और कलम टूटने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लेखनी को नहीं रोका। इस कहानी से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ कह लूँ कि अपना उद्देश्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप लोग, आपको अपना सुख, आपको अपना अहंकार भी छोड़ना पड़े तो पीछे हटना नहीं चाहिए। गणपति चाहते तो रुक जाते कि भाई कलम टूट गई है, अब मैं कैसे लिखूंगा। लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी, अपने दांत को तोड़ा और उससे लिखना शुरू कर दिया। वैसे तो विघ्नकर्ता गणपति जी के बारे में बहुत ही सारे प्रसंग हैं, लेकिन आज इस छोटे से प्रसंग को मैंने शामिल किया। आज हम सब गणपति का त्यौहार मना रहे हैं, आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है और भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें, आपको सद्बुद्धि दे, आपको समृद्धि दे। आज के दिन ऐसी ही मेरी कामना है आप सबके लिए। और एक बार फिर से आज के दिन की, गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं।

0: अलका याग्निक की आवाज में महानता फिल्म से हमने आपको ये गीत सुनवाया जिसमें माधुरी दीक्षित थी, साथ में थे संजय दत्त। और आज गणेश चतुर्थी है जिसकी मेरी ओर से आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयां। और एक बार फिर से यही कहूंगी कि भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें, सभी को सद्बुद्धि दें और सभी की प्रगति करें, सभी के घरों में सुख और शांति रहे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत पहले समय में गणपति महोत्सव जैसे आज होता है वैसे नहीं होता था। लोग भगवान गणपति की मूर्ति अपने घरों में लाते थे और घरों में अपने परिवार जनों के साथ गणपति पूजा और गणपति का जो भी कार्यक्रम है वो घर वालों के साथ किया जाता था। लेकिन आपको बता दें कि 1893 में जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेजों ने राज कर रहे थे, उस समय एक नियम था और वो ये नियम था कि जो भी भारतीय हैं वो एक साथ एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज सरकार को लगता था कि एक साथ मिलकर हमारे विरुद्ध में कोई कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग ना कर लें। इसलिए ये सख्त कानून था कि भारतीय इकट्ठे एक जगह नहीं मिल सकते। और तब स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में जब लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी थी, तब तिलक जी ने गणेश उत्सव को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ने का माध्यम बनाया और इस बात के लिए अंग्रेज उनसे मना नहीं कर पाए। भारत में रहकर भारतीय त्योहार को मना करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा और इस तरह से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। और इस उत्सव में समाज के सभी वर्गों, सभी जातियों ने एक मंच पे आकर एकजुट होकर कार्यक्रम करने की शुरुआत की। और इसका सारा क्रेडिट जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। और तब से गणेश चतुर्थी इस तरह से घरों के बाहर पंडालों में डांस के साथ, धूम धड़ाके के साथ, सभी वर्गों के लोगों को एक साथ मिलाकर मनाया जाने लगा। आजकल भी लोग घरों में भी मनाते हैं, लेकिन इस तरह से भी मनाया जाता है। तो ये परंपरा पुरानी नहीं है, ये 1893 से ये सब शुरू हुआ है। चलिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ हमने शेयर की और बस यही था आज का चिंतन। समेटते हैं आज के चिंतन को और सुनवाते हैं आपको दो बैक टू बैक गाने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold. This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: ये गाना तो एक मास्टरपीस है। किशोर कुमार की आवाज में कुदरत फिल्म का ये गाना कमाल है। और उससे पहले आपने उम्मीद फिल्म का गीत सुना, जो भी कमाल था। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में जितने भी गाने हैं, मेरा ये बहुत फेवरेट वाला गाना है। और आप सबको गाने पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय जी, आपने लिखा है कि गंवार फिल्म का गाना, अब बिल्कुल मैंने समझ लीजिए आप ही के लिए चलाया, आपको डेडिकेट करते हैं। और अब इस गाने को भी आपको डेडिकेट करते हैं। उल्लास का कहना है कि किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना आपका भी फेवरेट है, चलिए आपके नाम पर भी गया। मालती जी हमें सुन रही हैं, आपका चिंतन, कहती हैं हमें अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, थैंक यू साथ देने के लिए। और यही कहना है हमारे गिरीश जी का भी, और हमारे वीरेंद्र चौधरी जी का, हंसा जी का, दिव्या जी का, कीर्ति जी का, ललित छत्री सा जी का, विजय गुनवा जी, भारती दीदी, अनिल सोनी, हिमांशु पटेल, रागिनी जी, जगदीश जी बुशी से, अर्जुन जी, महेंद्र पटेल जी, एंड ऑफकोर्स हमारी रानी जी स्लाव वाली, थैंक यू। सभी को आज का चिंतन पता चला, तो आज गणपति जी का दिन है तो सोचा क्यों ना उन्हीं से रिलेटेड कोई बात की जाए। थैंक यू शेखर अनंत जी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। हसुमती जी, मधु जी, किरण जी हैरो से, इमरान, थैंक यू, स्वागत है आपका। और वीरेंद्र चौधरी जी, आपने हमें बताया है कि आप थेम्स पर जो गंगा आरती थी वो देखने के लिए गए। सच बताओ मेरा भी बहुत मन था वहाँ जाने का, लेकिन लेकिन लेकिन मैं पता क्यों नहीं गई, क्योंकि शायद मैं असल गंगा आरती देखने के लिए जाने वाली हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि हरिद्वार जाकर असल गंगा आरती ही देखूंगी, और मैं थोड़ा कल बिजी भी थी तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई। मुझे लग रहा था कि ये शायद आज है, मंडे को है, लेकिन ये तो कल हो गया, मतलब थोड़ा मेरा इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है ना। आपने फ़ोटो भेजी है तो ये कल ही हो गया होगा लेकिन चलिए, आपको बहुत मज़ा आया और वहाँ बहुत सारे लोग थे, आई एम श्योर उन्होंने बहुत इन्जॉय किया होगा। और ये जो हरिद्वार की गंगा आरती है ना, हरिद्वार में होती है या बनारस में, मैं देखो फिर कंफ्यूज हो गई, ये कहीं तो होती है, लेकिन जिसने भी देखी है कहते हैं एक बार देखने लायक है, जीवन में एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं भी प्लान कर रही हूँ कि देख कर आऊँ, फिर मैं आके बताऊंगी आपको कि वो कैसी थी। लेकिन फिलहाल अभी मेरा कुछ प्लान बना नहीं है, मैं आपको बता के जाऊंगी जब जाऊंगी। तो मैं नहीं चाहती कि आप सोचे ऋतु कहाँ चली गई तो इसलिए थैंक यू साथ देने के लिए, और जो बातें आप हमारे साथ शेयर करें अच्छा लग रहा है। बताइए अच्छा लगता है किस तरह से आप गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज हिंदी दिवस भी तो है ना, उसके बारे में भी कुछ बातें आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन फिलहाल तो हम आपको ये याद दिला दें कि भाई आप लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट एक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच देख सकते हैं अब जियो स्टार पर। 3 वनडे इंटरनेशनल्स जो खेले जा रहे हैं फ्रॉम संडे 13th अंटिल थर्सडे 17th सितंबर, दोपहर में 2:30 बजे से, नहीं 2:30 नहीं 2:50 से शुरू होंगे। तो ये देखने के लिए आपको डाउनलोड एंड सब्सक्राइब करना होगा जियो स्टार ऐप, एंड जियो स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: लाइक अ गोल्ड इज 5 फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: चलिए, इतने प्यार मोहब्बत से भरे गाने मैंने आपको सुनवाए कि मुझे इश्क है तुझी से, या फिर हमें तुमसे प्यार कितना, तो सोचा इसी प्यार के माहौल में एक और प्यार वाला गीत बजा दूं।

0: साजन फिल्म से था ये गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज में और किंग्सबरी में अमीन मोहम्मद जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। इसके अलावा दिनेश पोपट जी हमारे साथ जुड़े हैं एंड साक्षी को ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है जो स्लाव में सुन रही हैं। तो चलिए साक्षी, आपको डेडिकेट करते हैं ये गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Leica Extra podcast update. तो चलिए आपको पॉडकास्ट के बारे में, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट के बारे में अपडेट दे दें। उसका नया एपिसोड आ गया है और इसका टाइटल है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट रेजिंग डेब्ट्स और इसे होस्ट किया है खुश ने। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: Amazon offers term time working to their employees, like Anton, who's home to look after his daughters during their holidays.
5: Hello!
4: To him, this is the best sound in the world. Actually, maybe that's the best sound of all. Now that's term time working, offered at Amazon. 10 weeks off guaranteed per year, mix of paid holiday and unpaid time off. Conditions apply.
6: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब वर्ल्ड .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड .com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Visit travelhubworld.com.
8: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
8: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
9: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
10: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
9: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner ZTV and exclusive radio partner Leica Radio Network.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
12: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
13: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
14: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
15: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
16: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
5: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
17: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
18: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
19: लड्डू एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम हर मौके पर सबसे पहले आता है। पास हो गया, लड्डू खिलाओ। नौकरी लग गई, लड्डू खिलाओ। अरे सगाई कर ली, लड्डू नहीं खिलाए। और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना, तो खाइए और पछताइए।
20: कोई भी काम हो, सबसे पहला नाम लड्डू का।
19: जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है।
21: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
22: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa or

0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक था इस फिल्म में, और फिल्म का नाम राम बलराम, और उससे पहले शैलेंद्र सिंह की आवाज मैं शायर तो नहीं, ब्यूटीफुल गाना। और इस गाने को सुनकर महेश जी ने मैसेज भेजा है, कहते हैं ऋतु ये मेरा फेवरेट गाना है, चलिए आपके नाम पर कर दिया। और प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है, और आपने अगर अभी अभी सुनना शुरू किया है तो आपको बताती चलूं कि आज इस शो में रवि शर्मा जी की जगह मैं ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही हूं, और ये साथ 1 बजे तक रहेगा, और 1 बजे के बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। लेकिन आंटी जी आपको मैसेज आया है, और स्वागत है, अमिताभ बच्चन के गाने आपको पसंद आते हैं, एंड जासू जी कहती हैं कि ऋतु अगर आप जा रही हो गंगा आरती देखने के लिए तो अकेले मत जाओ, मुझे साथ ले चलो। तो चलिए ना, अच्छा लगता है मुझे तो, साथ में जाते हैं ना तो मज़ा 4 गुना हो जाता है। और आपने कहा है कि आप फेब्रवरी में जगन्नाथपुरी जाने वाली हैं, तो आप कह रही हैं कि चलो साथ में, तो आपको बता दूँ फेब्रवरी में तो मैं भी जाने वाली हूँ, लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी ये अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जगन्नाथपुरी भी मेरी लिस्ट में है, टिक लिस्ट में है, और मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यूरोप अमेरिका बहुत सारी जगह घूमी है पर मैंने भारत नहीं घूमा, तो मुझे अब भारत घूमना है। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतनी सारी कंट्रीज़ घूमी हैं लेकिन मुझे भारत जाकर जो मज़ा आता है ना वो मुझे कहीं नहीं आता। मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल वाले होते हैं, इतने हेल्पफुल नेचर के होते हैं, इतने सीधे सरल होते हैं, और मुझे लगता है तभी भारत पर इतने सालों विदेशियों ने राज किया, क्योंकि भोले होते हैं, समझ नहीं पाते हैं दूसरों की चालाकी, और इसीलिए 1000 साल से भी ज़्यादा हमारे भारत को दूसरे लोगों ने लूटा, खसोटा, तोड़ा ताड़ा, यू नो सब कुछ किया। सोचती हूँ कभी कभी तो बहुत दुख लगता है, लेकिन उस बात में नहीं जाऊँगी। बट हाँ, मुझे इंडिया जाकर बहुत मज़ा आता है, वहाँ का खाना पीना रहना, यू नो शॉपिंग वीपिंग, ओहो हो, मतलब बात जब करती हूँ तो लगता है कि बस वहीं पहुँच जाऊँ। तो जासू जी फेब्रवरी में मैं भी जाऊँगी, हो सकता है तो हम मिल जाएंगे, दुनिया बहुत छोटी है। लेकिन आपके ढेरों मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। कल्पना स्वागत है आपके इस मैसेज के लिए, और मैसेज भेजा है अशोक जी आपने, बहुत प्यारा मैसेज लिखा है, जी तो जा रहा है कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ दूँ, लेकिन मैं कहूँगी थैंक यू इतनी अच्छी बातें लिखने के लिए, और बस मैं आपका तहे दिल से थैंक यू ही कहती हूँ, इस तरह से आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे तो मुझे और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए। एंड अमीन जी आपने भी बहुत प्यारी बातें लिखी हैं, सो उसके लिए भी थैंक यू, थैंक यू सो मच प्यार के साथ साथ देने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज 14th September है, और आज का दिन हमारे भारतीय इतिहास और हमारी भाषाई पहचान के लिहाज से बेहद ख़ास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 14th September 1949 में जो हमारा संसद थी, जो हमारी संविधान सभा थी, उसमें एक बहुत लंबी बहस हुई थी और विचार विमर्श हुआ था, और उसके बाद हिंदी जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं को भारत की संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन आज भी भारत की हिंदी मात्र क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राज्य भाषा है। और आपको बता दें कि 14th September 1949 को फैसला होने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हर साल 14th September को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी, और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस आज ही के दिन 1953 में मनाया गया था, और उस समय अंग्रेजी भाषा का देश पर बहुत प्रभाव था, और इसी के चलते अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से अलग हटकर अपनी स्वदेशी भाषा को आम जिंदगी में भी और जो देश के कामकाज हैं उसमें बढ़ावा देने के लिए और भारतीयों को गर्व महसूस कराने के लिए कि भाई अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो इसमें शर्म की बात नहीं है, प्राउड कीजिए, हिंदी बोलना एक अच्छी बात है, आपकी भाषा है ये, और ये लोगों को महसूस हो सके इसलिए भी आज के दिन की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि बहुत सारी भाषाएं होती हैं जो अलग तरह से बोली जाती हैं, अलग तरह से लिखी जाती हैं, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है वो एक ऐसी भाषा है जो जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। इसलिए हिंदी को लिखना, सीखना, समझना, बोलना बहुत आसान है और भाषा तो बहुत सुंदर है ही। तो अगर आप हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, यकीन मानिए, क्योंकि जिस तरह से लिखी जाती है उस तरह से ही बोली जाती है। इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं पर ई का प्रोनंसिएशन कुछ होता है, कहीं पर आई का कुछ होता है, कहीं पर कुछ अलग रूल है, कुछ अलग रूल है। और इंग्लिश के बताऊं, इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो कई लैंग्वेजेस से इंस्पायर्ड होकर बनी है, दैट्स वाई उनकी अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल्स है, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप शायद ये जानते भी होंगे कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब भी आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। और गांधी जी का भी मानना था कि जिस देश के पास अपनी एक ऐसी भाषा नहीं है जो जन जन को जोड़ सके, तो उसकी आज़ादी अधूरी है। और उन्होंने 1918 के हिंदी सम्मेलन में सबसे पहले हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की बात उठाई थी, लेकिन ये बात अब तक उठी ही हुई है, हुई नहीं है। हिंदी अब तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, और ये काम कब होगा पता नहीं, लेकिन जल्दी हो ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज के दिन की आपको बधाइयाँ। और कुछ लोग आज के दिन को विश्व हिंदी दिवस से भी कन्फ्यूज़ करते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आता है और आज है राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि नेशनल हिंदी डे, जो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 128.9 भारतीय रुपए। और याद रखिए कि ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Like a Gold, 10:35 AM.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
4: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
5: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
4: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
10: Oh, look at that bump. You're glowing.
11: Oh, thanks.
10: Have you had your whooping cough and RSV vaccines yet?
11: Oh, no, not yet.
10: Definitely get both. My niece caught RSV after she was born. It was awful.
12: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong. Get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy vaccinations.
13: The Cycle of Love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
14: I left behind everything I knew.
13: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt, and unforgettable.
14: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
13: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
15: Say Ganapati Bappa Moriya! Like a radio network ki taraf se aap sabhi ko Ganesh Chaturthi ki shubhkamnaen.
16: Of the week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आग गले लग जा फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें शर्मिला टैगोर और शशि कपूर ने काम किया था, और शशि कपूर हैं हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
0: सो थैंक यू कल्पना, आपका मैसेज मिला है, आप शो को पसंद कर रही हैं, स्वागत है आपका इस शो में। और अगला गीत चलिए आपके नाम करते हैं, और आपके साथ साथ ये गाना जाता है हमारे नरेंद्र पांचाल जी के लिए भी, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। कहते हैं अगर इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं तो हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे हिंदी को तो हिंदी ही कहते हैं। हाँ एक्सेंट आप अलग कर सकते हैं। एनीवेज आप हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। एंड फारूक मोहम्मद जी आप भी हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाना चलिए आपको भी डेडिकेट करते हैं।

0: ब्यूटीफुल गाना अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाजों में, जिसे लिया था मैंने फिल्म यस बॉस से जतिन ललित का म्यूजिक। और अब इस गाने के बाद
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: So, इस गाने के बाद मैं आपको ले जाने वाली हूँ 50s की ओर। देखते हैं 50s वाला गाना कौन सा है। लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई बिग बॉस शुरू हो गया है। यस, बिग बॉस का 20th सीजन है ये। एक बार फिर से सलमान खान होस्ट कर रहे हैं और 9:30 बजे रोज कलर टीवी पर और जियो स्टार पर ये दिखाया जा रहा है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो स्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलोंग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस। जियो स्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
3: लाइका गोल्ड।
4: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको लेकर चलती हूँ 50s की ओर।

0: ब्यूटीफुल गाना मदर इंडिया फिल्म से लिया था और जिसे हमारे हरीश खत्री जी, स्वीटी कालरा जी, आप सभी ने पसंद किया है। और सुनीता जी कहती हैं कि ऋतु, मेरा भी प्लान है आपकी तरह भारत भ्रमण करने का, तो बिल्कुल कीजिए, इतनी सुंदर जगह है और साथ ही साथ अपना खाना, अपना वेशभूषा, शॉपिंग वीपिंग, यू नो इतनी सारी चीज़ें, वहाँ का मज़ा ही कुछ और है। तो बिल्कुल जाइए, नवम्बर में आप जा रही हैं, हाँ तो बेस्ट मौसम है भारत जाने के लिए नवम्बर का, घूम कर आइए।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और अगर दुबई जाना चाहते हैं तो साउथॉल ट्रैवल को कांटेक्ट कीजिए, उनके पास दुबई के लिए अच्छी डील्स हैं। उनका फोन नंबर है 0208-574-8410. साउथॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Mia!
3: Yeah?
2: Don't forget flu vaccine today.
3: Really?
2: Yeah, online consent form signed ages ago. It helps stop you getting really poorly with flu or passing it on to your baby brother.
4: If you have a child in reception to year 11, help protect them with a flu nasal spray vaccine. Your child's consent form could arrive by email, text, through your school app or in their bag. Look out for it and complete it. Stay strong, get vaccinated. Find out more at nhs.uk/child-flu.
5: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट ट्रेवल हब world.com।
7: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place.
10: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties.
10: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-6333 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Have you noticed the way fans shout at football matches?
14: Oh, wake up!
13: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
15: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
16: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
17: तैयार हो जाइए.
16: आइए एक यादगार शो के लिए।
17: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
16: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
18: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
16: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
19: ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी, एन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Like a Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at likeamedia.co.uk.
5: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
20: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
2: gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: So Gold Rate is 103.40 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: जी हाँ, आप बिल्कुल लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड सुन रहे हैं, जहाँ पर ऋतु शर्मा रवि शर्मा की जगह आपका साथ दे रही थी. लेकिन अब जाने का समय हो रहा है. अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज़ तक, और न्यूज़ के उस पार बाली ब्रह्मवट आपका साथ देंगे, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. कल रवि शर्मा जी होंगे इस शो में. आज आपने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत प्यारे मैसेजेस भी भिजवाए, थैंक यू सो मच साथ के लिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए मेरी ओर से बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थी की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं हमारी ओर से.
5: मैं हूं नीसा नासिर. लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा मत.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
6: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
8: गारंटेड.
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं, तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
8: फोन 02085748410.
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
9: नमस्कार. मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
12: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
13: स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th of September.
14: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
13: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
15: बिग बॉस में इस बार मिलेगा बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान.
16: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss House, exclusively on Jio Hotstar.
17: We're finally going home for the wedding.
18: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
19: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
18: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
19: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
18: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
19: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
20: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत

0: Johnny Rumba.
1: Okay, so you heard two songs, one from Sita aur Geeta aur dusra Zamana Deewana. Ye dono filme produce ki thi kisne? Of course, G.P. Sippy ne. Aur Ramesh Sippy ne direct bhi ki thi, inke bete ne. Ab jab shabd aata hai Sippy, to people do get confused because there are so many different Sippies in Bollywood. To main aapko aapka misunderstanding ya confusion clear kar dunga, because there are three separate Sippy dynasties. Aur teen dynasty kaho dynasty kaho, lekin teen separate families hai Sippies ki. पहले हम जी पी सिप्पी की बात करते हैं, बिकॉज इट इज हिज 112th बर्थ एनिवर्सरी. इनका नाम गोपाल दास परमानंद सिपाही मलानी. सिपाही मलानी, जी हाँ. एक्चुअली दिस वॉज द फैमिली दैट वॉज द फादर ऑफ जी पी सिप्पी, दैट्स गोपाल दास के फादर परमानंद. दे वर settled in Karachi, big rich family, property developers, and they had lots of money. They had spread out all their empire towards Europe and also towards Bombay, that is Mumbai. Wahan bhi inhone properties mein invest karke rakha hua tha, but based in Karachi. And 1947 tak. फिर उसके बाद देवर इन ऑफकोर्स जी पी सिप्पी वॉज बोर्न इन सिंध, दैट्स हैदराबाद सिंध विच इज नाउ इन पाकिस्तान. एंड ही हिमसेल्फ वॉज अ लॉयर, बट पिताजी और फैमिली इन लोगों ने वहाँ पे अच्छी तरह जमावट की हुई थी, लेकिन दे हैड टू देवर रिमूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. And they had to go without any properties or any belongings. They just had to leave. Lekin dusre jo safar karte the, when they had to leave without anything, in logo ko itni takleef padi nahi thi, because they came to Bombay, where they already had a little jamawat. Aur wahan pe government ne bhi inko thodi si grants di thi because of the properties they lost in Pakistan. So, वो पैसा सारा जमा करके लेकर दे बिकेम प्रॉपर्टी डिवेलपर्स. जी पी सिप्पी बिकेम अ प्रॉपर्टी डिवेलपर इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ लॉयर. एंड देन एक फिल्म बनाई उस पैसे से, और फिल्म थी सजा 1951 की. फिल्म अच्छी गई, अच्छी गई तो ऑफकोर्स कीड़ा घुस गया फिल्म बनाने का, और जी पी सिप्पी वॉज बॉर्न. Yes, as a producer and director of films in the Bollywood. And he established Sippy Films. Sippy Films was born. Wo pehli jo film thi Saza 1951 ki, usme Devanand the aur Nimmi thi. Ab inka original surname tha Sipahi Malani. Lekin kya tha, ye log goron ke saath kaam karte the, Europeans and English people, Americans, sab log jo business karte the inke saath, they used to say ke we cannot pronounce your surname, is too long, Sipahi Malani, so we're gonna call you Sippy. Oh, bolte theek hai na, Sippy will do, you know, danda karo, wadi hum to Sindhi hai, to humko to dande se matlab, आप सिप्पी बोलो सिपाही मलानी बोलो लेकिन धंधा दो. तो फिर नाम सिप्पी क्रिएट हो गया, और जी पी सिप्पी ने फिल्में बनाना शुरू कर दिया 1951 से. उसके बाद शहनशाह 1953, 12 o'clock 1958, भाई बहन 1959, मेरे सनम विश्वजीत वाली, आशा पारेख वाली, मेरे सनम 1965 की फिल्म, फिर ब्रह्मचारी जिसमें से अवार्ड भी मिला, एंड देन बंधन फिल्म, अंदाज फिल्म, अंदाज हिडलई हो, यू नो व्हाट आई मीन, एंड सीता और गीता. जब ही आपने अभी गाना सुना, कोई लड़की, हाँ फिर शोले फिल्म बनाई 1975 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर दैट वाज ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी सो वाज सीता और गीता और सो वाज अंदाज फिल्म फिर तृष्णा 1978 एहसास 1979 फिल्म शान 1980 जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ओ यस हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक तो हम फिल्म शान का गाना आपको सुनाएंगे जहां पे रफी साहब ने गाया था शशि कपूर जी के लिए और वो कहानी मैं थर्ड आवर में आपको बताऊंगा फिल्म सागर ओ माय गॉड लवली भ्रष्टाचार 1989 पत्थर के फूल 1991 90s में एंटर हुए एंड राजू बन गया जेंटलमैन जहां पे शाहरुख खान चमक गए थे एंड आतिश 1994 की फिल्म एंड देन अभी आपने जमाना दीवाना वो गाना जो आपने सुना वो मुझे सिप्पी साहब ने मुझे बुलाया था रमेश सिप्पी जी ने जमाना दीवाना हो गया लेकिन स्केल मेरा बराबर नहीं था उसमें क्योंकि वो रैप था ना उसके अंदर तो उन्होंने कहा बाली विल सूट लेकिन इन्होंने ऑलरेडी ट्रैक बना के रखा हुआ था एंड दैट वाज नॉट माय स्केल सो विनोद राठौड़ को ये गाना दे दिया गया विद अलका याग्निक एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर लेकिन मैंने जीपीसीपी के लिए एक गाना तो मैंने गाया आई विल एंड माय शो आफ्टर 3 hours द लास्ट सॉन्ग सेकंड लास्ट सॉन्ग विल बी अ सॉन्ग दैट आई सैंग फॉर जीपीसीपी फिल्म्स जी हाँ एंड पिक्चराइज्ड ऑन जावेद जाफरी ओके आगे बढ़ते हैं विनोद राठौड़ का बर्थडे था 12 तारीख को सो मेरे भाई को मैंने हैप्पी बर्थडे विश किया था और ये गाना मैंने पहला जो सुनाया विशिंग हिम अ हैप्पी बर्थडे लेकिन लेट्स कम बैक टू जीपी सिप्पी तीन सेपरेट डिनेस्टीज जीपी सिप्पी दे यूज टू डू मासिव हाई बजट एक्शन पैक्ड ब्लॉकबस्टर्स जीपी सिप्पी उनकी टीम एनसी सिप्पी की टीम दे वर फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर्स विद ऋषिकेश मुखर्जी बिलवड क्लीन मिडिल क्लास फैमिली कॉमेडीज एंड ड्रामाज जैसे कि फिल्म आनंद गोलमाल चुपके चुपके है ना एंड सत्ते पे सत्ता ये फिल्में अभी एनएनसीपी दैट वाज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर एंड ही यूज टू मेक फिल्म्स विच वर स्लिक थ्रिलर्स एंड म्यूजिकल हिट्स जैसे कि काली चरण सौदागर है ना वो कौन थी कर्ज वो कौन थी फिल्म इतनी हिट हुई उन्होंने एक घोड़ा रखा था जिसके ऊपर बैटिंग चलती थी एंड ही यूज टू डू बैटिंग विद हॉर्सेस एंड एक घोड़े का नाम ही रखा था वो कौन थी दैट वॉज एन एन सी पी बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन जी पी सी पी मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीबडी इन द मिडलैंड्स इट्स 433rd डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी कहते हुए मैं शुक्रगुजार हूँ सफदर भाई का सफदर भाई जान ने मुझे मिठाई भेजी ब्यूटिफुल बॉक्स स्पेशली मेरा नाम लिखकर उन्होंने मेरे यहाँ स्टूडियो पे भेजी के बाली ब्रह्मभट्ट को दे देना ये मिठाई सो थैंक यू सो मच सफदर भाई जान इट्स सो काइंड ऑफ यू सो लवली ऑफ यू एंड आगे बढ़ते हैं रिमेम्बरिंग जिपी सिप्पी ऑन हिज 112th बर्थ एनिवर्सरी थर्ड आवर में वी गोना रिमेम्बर नन अदर देन राजकुमार कोहली
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Okay, £1 in British sterling will fetch you up to, let me see the latest rate of SBI UK, 128.9. It's changed. It's 128.4 Indian rupees for one British sterling pound. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
4: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24 our line.
5: માયા ભાઈની મોજમાણમાં થઈ જાઓ રેડી. માં કૃપા ફાઉન્ડેશન્સ યુકે પ્રેઝન્ટ્સ ભવ્ય ડાયરો. માયાભાઈ આહિર, જયશ્રી ભોજવિયા અને નિર્મળસિંહ ઝાલા સાથે 26 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ.
6: વેન્યુ: ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 3, 10 સ્ટોન ફિલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલીપ, HA40JS.
5: ટિકિટ્સ 30, 40 અને 50 pounds. લાઇટ રિફ્રેશમેન્ટ ઇન્ક્લુડેડ.
6: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509.
7: Search is changing.
8: Customers aren't just using Google anymore.
7: They're asking AI.
8: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
7: One business, one recommendation.
8: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
7: Will your business be the answer?
8: Or the one that got left behind?
7: The future of search has already started.
8: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
7: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट. कॉल 01923-227274. बुक योर टेबल टुडे.
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
12: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
13: SonaTours.co.uk, special offer, holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208-951-0111.
14: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
15: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.
16: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: एस डी बर्मन का संगीत और राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स, इनकी पहली फिल्म सजा 1951।
1: अक्रॉस लंदन, दिस इज बाली ब्रांबाट ऑन लाइक ए गोल्ड
0: एंड द एवरग्रीन हिट ऑफ कोर्स जिंदगी एक सफर है सुहाना।

0: चंदन 1969 की, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय जीपी सिप्पी।
1: चमके अरे थम थम कोई बिजुरिया।
2: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नहीं।

0: Okay, so we have got a very juicy subject here of GPCP. अब GPCP से मैं थोड़ा सा digress होता हूँ. It's a 112th birth anniversary of GPCP. अब मैं शम्मी कपूर के ऊपर जाता हूँ, because ये गाना आपको तो मालूम ही है, ब्रह्मचारी. The film was produced by, of course, GPCP. लेकिन ये एक दोस्ती जो थी शम्मी कपूर और जय किशन की, जय किशन या शंकर जय किशन के जय किशन, वो हमेशा बैठा करते थे एट अ रेस्टोरेंट. वो डिटेल्स मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑल आई कैन से कि दे यूज टू फाइट समटाइम्स, दे यूज टू आर्ग्यू, दे यूज टू फाइट समटाइम्स. दोस्ती में ऐसा अप्स एंड डाउन्स तो होता ही रहता है, एज यू ऑलरेडी नो. अगर गहरी दोस्ती, सच्ची दोस्ती हो तो उसमें झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन फिर वो दूसरे दिन वापस एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं. शमी कपूर एंड जय किशन हैड अ मेजर क्लैश. यू नो, व्हेन जय किशन रिफ्यूज्ड टू टेक बैक हिज ब्रिलियंट सॉन्ग, एक फिल्म थी फिल्म में गाना था ससुराल फिल्म में, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे. तो ये LV प्रसाद की जो फिल्म थी ससुराल, उसमें ये गाना डाला गया था. शम्मी कपूर वांटेड दैट सॉन्ग सो बैडली, लेकिन जय किशन वुड नॉट डू दैट, बिकॉज एक प्रिंसिपल की बात थी. उन्होंने ये गाना LV प्रसाद जी को दे दिया था वापस लेकर, उनको अपसेट नहीं करना चाहते थे, और शमी कपूर को भी उन्होंने मनाया, लेकिन शमी कपूर मुंह चढ़ा के अपसेट हो गए थे. फिर जय किशन, अ मैन विद स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल मॉरल्स, ही स्टूड फर्म इन हिज डिसीजन. शमी कपूर लेटर ऑन, बाद में उन्होंने अप्रिशिएट की थी ये बात, एंड ही रेकनसाइल्ड विद हिम. नाउ देयर इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी बिहाइंड शंकर जयकिशन का मास्टरपीस गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर. इट वॉज रिकॉर्डेड ओरिजिनली फॉर देवानंद की फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, इन 1961. एक्चुअली क्या था, ये गाना जब रिकॉर्डिंग जब हुआ तब देव साहब वॉज नॉट इन टाउन, एंड व्हेन ही केम बैक फ्रॉम हिज जर्नी, when he came back he heard the song and he rejected it. He said ke ye it won't go with my persona, ye meri style ka gana nahi hai, so main is gaane ko nahi lunga, I'm sorry but I have to say no. So Jay Kishan ji ne kya kaha, unhone, wo bade confident the about this composition, but he got very upset and he sort of, because of the rejection by Dev saab, and इवेंट टू शमी कपूर, उनके रोज शाम को बैठ के या दिन में बैठ के कॉफ़ी पीना या बैड ड्रिंक करना और बैठ के डिस्कशन करना. तो उन्होंने कहा कि यार देव साहब ने मुझे बड़ा अपसेट कर दिया. बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोलते कि ये बात हुई, मैंने गाना इतने दिल से ये गाना मैं बनाया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. बोले मेरे को सुना, मेरे को सुना. अपॉन लिसनिंग टू द सॉन्ग शमी कपूर जम्प्ड इमीजिएटली, ही जम्प्ड एट द आइडिया एंड ही सेड ये गाना मेरा होगा, एंड आई वॉन्ट हिम फॉर द फिल्म बदतमीज. हाँ, यू वोंट बिलीव दिस, इट वॉज मेंट फॉर दिस फिल्म. उन्होंने कहा कि देख ये गाना मेरे लिए रखना, द सॉन्ग इज माइन, प्लीज कीप इट. एंड ही टुक द सॉन्ग टू मनमोहन देसाई, हु वॉज डायरेक्टिंग बदतमीज एट दैट टाइम. तो मनमोहन देसाई ने, he could not picturize it due to the budget constraints. ek budget hota hai na film ka, to budget ke bahar ja raha tha sab kuch, and he said sorry Shami, main nahi kar sakunga because budget constraints. And Shami afterwards gave the song to GPCP, who was producing Brahmachari, and that's how the brilliant creation, once in the right hands, became an all-time classic. It became an all-time classic, no doubt. Devanand saab pachtaye, Manmohan ji bhi, Manmohan Desai bhi pachtaye. Ye gana kitna bada hit ho gaya. And there you go. And Shami Kapoor for that film also got a Filmfare Award. I thought I'd share out the little story. Those who knew it, congratulations. Those who didn't know it, of course, main hoon na. मैं हूं पाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव डीएबी एलेक्सा गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com एंड इन Leica Radio Midlands, 433rd day of Leica Radio Midlands. It's week number 38. And you can say Leica Gold, that was born 5 years ago. And this is the second day of the year. Year 6 mein aa gaye hum, 5 saal poore ho gaye. It was Dil Se Radio rebranded on 13th of September 2021. So 5 saal ho gaye aur maine bhi wapas shuruaat ki thi. Pehle main Dil Se Radio mein tha, fir main nikal gaya, fir main wapas aaya and Raj Patan brought me back 5 years ago on 13th of September 2021 to Dil Se, I mean to Leica Gold Radio. So meri bhi birthday hai, 5th birthday. And I thank my wife Sheila, my daughter Sita, my granddaughter Saraya, my brother Bob, and my bhabi ji Meena. They all got together and they brought a cake home and celebrated my 5th birthday with Leica Gold. And my wife said, I see you work till 2 o'clock every night for last 5 years. And who better to know than me? And this is why I am celebrating your 5th birthday with Leica Gold. So, meri bhi birthday hai, jaise Leica Gold ki. I'm very happy.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply. 128.4 Indian rupees to the pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahut Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
5: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV, an exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
11: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 p.m. exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English but louder.
13: Four beers please, garçon!
12: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
14: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
15: Laddu ek aisi mithai hai, jiska naam har mauke par sabse pehle aata hai. पास हो गया लड्डू खिलाओ, नौकरी लग गई लड्डू खिलाओ, अरे सगाई कर ली लड्डू नहीं खिलाए, और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना, तो खाइए और पछताइए।
16: कोई भी काम हो सबसे पहला नाम लड्डू का,
15: जानते हैं क्यों?
16: क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
17: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Wow, wow, wow. I mean, these songs are epic. Honestly, itna maza aata hai, but the man behind it is who, what we are talking about. That's right. We are talking about Rajkumar Kohli. He was born on 14 September 1930. Now, of course, born in 1930, so that makes it 96th birth anniversary of Rajkumar Kohli, the father of Arman Kohli. Yes, Arman Kohli is quite a famous name when you look at Big Boss season number 7. Big Boss 7 mein Arman Kohli was in there. But kaise inhone itne saal bita diye apne bete ko upar lane ke liye. Inke bete ko 8 saal ki umr se usko child roles diye aur uske baad usko main role hero बना के उसको कोशिश की कि उसको हीरो बनाया जाए और बड़ा नाम कमाए. वेरी गुड लुकिंग बॉय एंड एवरीथिंग, लेकिन कैटास्ट्रोफी आफ्टर कैटास्ट्रोफी एंड इट नेवर हैपेंड. नेवर माने नेवर हैपेंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजकुमार कोहली फर्स्ट. बोर्न ऑन 14th ऑफ सितंबर 1930 इन लाहौर, which is in Pakistan now. 24th November 2023, he passed away in Mumbai at the age of 93. A great innings, but a very dissatisfied soul. He died as a dissatisfied soul. Abhi apne inke bare mein agar main kahun to neend nigahon se kho jati hai. Ye gana film Lutera ka hai. लुटेरा फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की और इसमें दारा सिंह थे. दारा सिंह वॉज द हीरो ऑफ द फिल्म. एंड हीरोइन कौन थी? निशी. यस, हीरोइन कौन थी? निशी. अब इस फिल्म की हीरोइन जब निशी थी, तो इन्होंने जब फिल्म बनाई तो निशी को हीरोइन रख के, जिसका रियल नाम निशी कोहली, बट एक्चुअली निशी कोहली was actually Krishna Kumari Sharma. She was born in 1st January 1935 in Sialkot in Punjab. So, hamare Rajkumar Kohli fell in love with her. That's right. Ye film mein jo heroine thi wo, he fell in love with her and he married her until he passed away. Until his death. And Nishi and him, after marriage, they had kids, and of course, Rajneesh Kohli and Arman Kohli. Arman Kohli ko 8 saal ki umr mein achhi-achhi filmein inhone dilayi thi. Arman Kohli ko, which was like as a child star, he came into a couple of films. Lekin baad mein usko virodhi film mein hero banaya gaya. Virodhi film mein jab wo hero bana, लेकिन फिल्म बड़ी फ्लॉप हुई. फिर उसको चांस मिला दिव्या भारती के साथ फिल्म दीवाना में. दैट वॉज ऋषि कपूर एंड देन अरमान कोहली एंड हीरोइन थी दिव्या भारती. लेकिन ही वेंट फॉर अ शूट एंड ही वॉक्ड आउट ऑफ द फिल्म आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट शूटिंग स्केड्यूल एंड शाहरुख खान गॉट द रोल. शाहरुख खान को जब ये रोल मिल गया, ऑफ कोर्स उसकी लाइफ शुरुआत हो गई. शाहरुख खान ऑलवेज सेज व्हेन एवर ही टॉक्स अबाउट द फिल्म दीवाना, ही सेज आई हैव टू थैंक अरमान कोहली बिकॉज ही वॉक्ड आउट ऑफ द सेट्स, आई गॉट द रोल एंड टुडे आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ अरमान कोहली रिफ्यूजिंग दैट, आई मीन वॉकिंग आउट. एंड ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर द लीड रोल फॉर बाजीगर, पर वो रोल भी शाहरुख खान के पास गया. एंड दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें भी इसने रिजेक्ट कर दिया रोल और परमीत सेठी को रोल मिल गया. अब ये रोल्स बार बार ये मना क्यों करता गया? अरमान कोहली आई वुड से वाज काइंड ऑफ, आई शुड नॉट बी रूड टू हिम, बट ही वाज काइंड ऑफ अ स्पॉइल्ड ब्रैट बिकॉज हिज फादर हैड मेड सच सक्सेसफुल फिल्म्स. इतनी खूबसूरत फिल्में इन्होंने बनाई, तो नेम वॉज सो फेमस एंड राजकुमार कोहली हैड मेड सो मच मनी एंड बेटे को वॉज सिल्वर स्पून यू कैन से, बट वो रिजेक्ट करता गया बिकॉज उसने कहा कि ये फिल्म दीवाना में बोलते ऋषि कपूर को ज़्यादा बड़ा रोल दिया जा रहा है और मुझे छोटा सा रोल क्यों दे रहे हो, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट रोल। फिर उसके बाद शाहरुख खान का जो रोल था बाजीगर में, वो बोलते नेगेटिव रोल मैं नहीं करूँगा, नो वे, उसने मना कर दी। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें बोलते कि मेरे को मेन रोल चाहिए, आई एम अ हीरो, तो मेरे को हीरोइक रोल्स चाहिए, बड़े रोल्स चाहिए, सो ये रोल मैं नहीं लूँगा। और परमीत सेठी को रोल मिल गया एंड इट बिकेम दिल वाले दुल्हनिया द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन इंडिया। ऐसी ऐसी गलतियाँ की उसने। डैडी ने उसको दुश्मन जमाना, कोहली स्टार्ड इन सेवरल ऑफ द फिल्म, यू नो दुश्मन जमाना, अनाम, औलाद के दुश्मन, फिर उनके डैडी ने कहर फिल्म बनाई एंड देन ही ऑल्सो वेंट ऑन बिग बॉस 7। फिर इवेंचुअली नेगेटिव रोल उसने किया ही किया, यस, सलमान खान की स्टारर फिल्म प्रेम रतन धन पायो, उसमें उसने नेगेटिव रोल किया, तो पहले से मान जाता तो ही वुड हैव रियली सक्सीडेड वेरी वेल। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट राजकुमार कोहली, जिन्होंने फिल्में बनाई जैसे कि कहानी हम सब की, नागिन फिल्म, नागिन का आपने अभी गाना सुना, जानी दुश्मन, दैट वॉज अनदर ब्यूटिफुल फिल्म। इन्होंने जानी दुश्मन वापस 2000 के बाद उनके बेटे को रिवाइव करने के लिए की, लेकिन इट वॉज द बिगेस्ट फ्लॉप यू कैन एवर सी। एंड देन ये गाना जो आपने सुना, क्या नाम है तेरा, वो क्या नाम है तेरा, उसमें ऋषि कपूर का नाम जो आता है, ही वॉज एन एक्टिंग इन द फिल्म, ही केम एज अ कैमियो रोल इन नौकर बीवी का। और अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई, राजकुमार कोहली ने एज अ प्रोड्यूसर गोरा और काला, एंड देन लुटेरा, लुटेरा के बाद तो ऑफकोर्स हीरोइन से शादी कर ली, एंड देन ही सेड मैं जट्टी पंजाब दी, पंजाबी मूवी, अनदर वन पिंड दी कुड़ी ही डिड, एंड सपनी, ये सब पंजाबी मूवीज, दूल्हा भट्टी, ये सब पंजाबी मूवीज इन्होंने प्रोड्यूस की थी। और डायरेक्शन में तो ऑफकोर्स लाइक आई सेड टू यू, विरोधी, पति पत्नी और तवाइफ, 20 साल बाद, साजिश, इंतकाम 1988 की, इंसानियत का दुश्मन, जीने नहीं दूंगा। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, अरमान कोहली को जितनी फिल्में दी गई उसमें सब नेगेटिव टाइटल्स थे, विरोधी, कहर। अगर कुछ पॉजिटिव टाइटल होता तो शायद कुछ बन सकता था, मे बी आई एम सुपरस्टिशियस, आई डोंट नो, बट वी आर रिमेम्बरिंग ऑफकोर्स राजकुमार कोहली। राजकुमार कोहली हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज शशि कपूर। और शशि कपूर जी ने कोई फिल्म की थी क्या? वेल, शशि कपूर हैड साइंड फॉर जानी दुश्मन, ये फिल्म में इन्होंने साइन कर दिया और फिर ही ऑप्टेड आउट बिफोर द फिल्मिंग बिगैन। सो राजकुमार कोहली के साथ शशि कपूर ने कभी कोई फिल्म नहीं की थी, लेकिन शान फिल्म, दैट वॉज जी पी सिप्पी की फिल्म, उसमें शशि कपूर जी ने रोल निभाया शान फिल्म में विद अमिताभ बच्चन। और जो गाने थे उसमें रफ़ी साहब की आवाज़ थी ऑन शशि कपूर, एंड किशोर कुमार एंड आर डी बर्मन, ये सब आवाज़ें थी ऑन ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन। सो नेक्स्ट गाना होगा ऑफ फिल्म शान फॉर आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक शशि कपूर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to the exchange rate being 128.4 Indian rupees. 128.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Olive oil ordered and arriving today with Amazon Prime. Phew, now that's off your mind. You can think about something else, like keeping your skin smooth. With a small drop of olive oil. so al dente. Someone sprinkle me with pepper. Same day delivery. It's on Prime. Geographic restrictions, cut-off times and T's and C's apply. Details on product page.
3: Yeah. Leica Gold.
4: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
5: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks, the digital to agency that doesn't play safe.
8: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Southall Travel.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
12: To aaiye Godfather & Co. Vivek House Bar & Kitchen.
11: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
12: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
13: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
16: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday's scenic Swiss tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
17: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
18: Say Ganapati Bappa Moria.
19: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.
0: And the 20th season of Big Boss is back, hosted by Salman Khan. The show airs every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, Jio Hotstar is streaming every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV. और आगे दूसरा कुछ कहूँ मैं? Of course मैं कहूँगा. Because Udit Narayan, 90s Bollywood legend, Udit Narayan performs with his son Aditya Narayan at OVO Arena Wembley on Sunday, 20th December. Tickets available from Ticketmaster and AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. And Leica Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Raga San. Details at LeicaRadio.com.
1: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits.
20: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
21: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
22: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
21: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
22: विजिट TravelHubWorld.com.
23: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
24: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
23: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
24: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
23: ICICI Bank UK, transfer now. Celebrate together.
25: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. DLC supply.
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
26: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
27: Dubai is the place. 11, 11.
26: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
28: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
29: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
7: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
30: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइस्लिप HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ. वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22-87509.
31: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
32: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
33: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 01
2: मीनार ज्वेलर्स। अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: There you go, Ek Hi Rasta, 1956, Hemant Kumar and Lata Mangeshkar. What a song! Hemant da ka sangeet, Majroo Sultanpuri ki lyrics.
1: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: I would like to let you know a little bit of sad information about Rafi Sahab, you know, when he sang for Shashi Kapoor in the film Shaan. And the film was released in December in 1980, but then Rafi Sahab had passed away before the film was released, and that was the sad part of it.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3475, Indian rupees 129.11, Afghan Afghanis 86.87, Pakistani rupees 373.76, Kenyan shillings 174.52, and Mauritian rupees 63.48.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.95 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Gold, traffic and travel.
3: This is Martin with your travel. It's queuing on the M4 westbound at junction 2 Brentford this afternoon. That's following an earlier breakdown. Slow on the A312 the Parkway southbound before the M4 junction 3. Slowing on the A312 Church Road and Mandeville Road as you head from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. It's queuing on the A406 North Circular Road southbound at the Hangar Lane Gyre today. The speed sensor's giving a travel time there in about 15 minutes. Slowing on the A3 West Hill westbound around the A205 South Circular coming from the one-way system. Finally to the tube and severe delays on the Piccadilly line due to earlier signalling problems at Bounds Green. That's your latest traffic and travel.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Toothpaste ordered and arriving today with Amazon Prime. Phew, now that's off your mind. You can think about something else. Like the actual age of your toothbrush. Is it a few weeks? A month? A year? It could be a year. Better get a new one. Maybe two. Same day delivery. It's on Prime. Geographic restrictions, cut-off times and T's and C's apply. Details on product page.
1: Bali Brumbut on Gold Afternoons. Like a
5: gold. Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
6: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
7: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
10: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
11: Dreaming of paradise?
12: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
13: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
12: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
13: At all protected.
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
15: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
16: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
15: ये तो बताओ, कोई पता चला?
16: गुरु गुरु,
17: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
16: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
17: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
18: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
15: शीघ्र शीघ्र।
17: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
19: टू बुक कॉल 02085145400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
20: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
21: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
22: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
21: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
23: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
24: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
23: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
25: Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
26: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
27: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
28: I left behind everything I knew.
27: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
28: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
27: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
29: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
30: देखा तुझे तो दिल गाने लगा, सांसों में जादू कोई जाने लगा, जाने जाना।

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड। एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocenter.org। Assuming you want to get noticed.
4: लड्डू एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम हर मौके पर सबसे पहले आता है। पास हो गया, लड्डू खिलाओ। नौकरी लग गई, लड्डू खिलाओ। अरे सगाई कर ली, लड्डू नहीं खिलाए। और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना, तो खाइए और पछताइए। कोई भी काम हो, सबसे पहला नाम लड्डू का। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की
5: शुभकामनाएं। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Ye
2: ya wo. There's nothing nicer than being accused of being mean on drive time. That means it's working. Ye ya wo. That's when I get all the love pouring out to me. Sandy, you're so cruel. Sandy, that's really rough. Sandy, that's not fair. Love it. So, as you know, Shashi Kapoor is our artist of the week. And it'll be very interesting which way Anissa goes when we do speak to her later on. But for now, here are the two choices. They are, as I said to you, they're both wonderful duets. They're both really feel-good, really romantic duets of Shashi Kapoor. Both sung by Mohammed Rafi Saab and Lata Mangeshkar. The first one you're voting for. And thank you for all of you who have already voted. So this is for the silent listeners and those of you sitting on a fence still. Those of you who are making charm, maybe driving, couldn't. It's your last chance. Get stuck in before we speak to Anissa Nasr and find out her answer. And I'll tell you who I'm going to vote for. The first song is from the film Kala Pathar, Baahon Mein Teri Masti Ke Dehre. Ya B, from Swayamvar, Mujhe Chhu Rahi Hai. Which one gets your vote?
0: WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23. Yeah, Like a Gold. Like a Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: And they're renowned for their competitive holiday deals to Dubai. Why don't you contact them today on 0208 574 8410? And don't forget, be rest assured, Southall Travel is atoll protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Like a Gold.
3: Travelhubworld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travelhub 24/7 on 0208 782 8833 or visit travelhubworld.com.
4: Travelhub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
7: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena, Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
9: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
10: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
8: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
11: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Online at Eventbrite.
12: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
13: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी. रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी. कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2, साउथ राइस्लिप HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ. वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777 8 7 5 0 9.
14: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 0746699 7575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिटेड, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 0746699 7575.
1: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
16: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
15: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासन.
17: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
18: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
19: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Drive with Sandy Shah. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And a pound's going to get you 129.27 Indian rupees, 87.66 Afghan Afghani, 374.58 Pakistani rupees, 166.16 Bangladeshi Taka, and 444.16 Sri Lankan rupees.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And gold is trading at £101.98 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: अनीसा नासर
3: सैंडी शाह
1: की हाल चाल है
3: बिल्कुल अच्छी हूँ
1: ठीक ठाक
3: सुनाओ तुसी ठीक हो
1: बस तड़िया दुआवां चीज दिया ने लेट मी आस्क यू क्वेश्चन
3: चलो इम्तिहान शुरू हो गया
1: हां जी आप आपकी याददाश्त कैसी है
3: कोई अड्डा मैं गुरूर कोई नहीं अपनी याददाश्त दो ही चीजा वैसे रब ने चंगिया दित्तियां ने एक ते मेरी याददाश्त है और दूसरी
1: अपनी शक्ल
3: दूसरी मैं याद नहीं आ रही
1: मैं तो उन्हें तेरी शक्ल
3: रेडियो
1: वास्ते चलेगी
3: I really like this beastie very much.
1: प्यार नल कितनी है?
3: हाँ चलो ठीक है. बेस्ती तो बेस्ती प्यार नल करो.
1: मैं तो बड़ा तेरे बदले तो मैं बड़ा खुश किस्मत हूँ. मैंने उत्ते भी आने देने बिल्डिंग में.
3: अच्छा है ना वैसे.
1: तारी शक्ल दे वाकी.
3: चलो ठीक है. चलो accept करो.
1: क्योंकि मैं सोचते पूछा यार दाश्ते बारे क्योंकि एक सर्वे निकली है कि being forgetful is a sign of high intelligence.
3: इसे
1: हाँ अगर तू चीजा भूल जानी है तो तुम बहुत ज़ेनी है
3: तेरा नाम की है सैंडी
1: बतन की दसा
3: सही
1: हाँ जी मैंने हमेशा कहा गया कि सवाई रफी साहब दे डेटा तो मैंने कुछ नहीं याद रहा ऐ भी चंगा है मैंने कबूल है
3: नहीं वैसे मैं मजाक के एक साइड पे मैं कभी किचन में जाती हूँ फ्रिज खोलती हूँ और फिर मैं खड़ी होकर सोचती हूँ कि मैंने
1: बाहों में तेरी मस्ती की देन रफी साहब लता काला पत्थर दूसरा मुझे छू रही है फ्रॉम स्वयंवर लता मंगेशकर और रफी साहब आप किसको वोट देंगी
3: बाहों में तेरी
1: थैंक यू एवरीवन ओह माय वोट 100% all day Bahon Mein Teri.
3: Oh, good.
1: No comparison.
3: Good, glad to know that.
1: Absolutely love it. Especially when Rafi Saab kicks in. Anyway, thank you to all of you who took part. The next song has won. Very, very kind of you. The wonderful Anisa Nasser is next, as you've already heard. She remembered to come in, so that's a good idea. And don't forget, Gold Nights Tonight. They are some lovely hand-picked songs overnight as well. And if you enjoyed even a single song on Drive, do me a favour. Pop in again tomorrow. We'll do this all over again, give you some facts and figures. Do an Artist of the Week, and I'll have a lovely chat with the one and only Anisa Nasser. Look after yourselves. Thank you for your votes. Bye-bye for now.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Drive with Sandy Shah. Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The M4 still a bit busy onto the elevated section eastbound from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. The A312, the parkway, all cleared up now southbound before the M4 Junction 3. Ealing Road closed in both directions between Netley Road and High Street. It's due to a building fire. It's slowing on the A312 Church Road and Mandeville Road from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to North Holt Station. Continues to queue on the A406 North Circular Road in both directions at the Hanger Lane Gyratory, A40 Western Avenue heavy westbound before Gypsy Corner. To the Tube and minor delays on the District Line eastbound between Earls Court and Tower Hill. It's due to earlier passenger being taken ill.
2: Leica Gold.
3: This part of the show is sponsored by Anupama. Every day at 8:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410 दैट्स 0208574 8410
3: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
6: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
8: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लास थोड़ा देसी
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
8: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
7: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वटवुड कॉल 0192322727274 बुक योर टेबल टुडे
9: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111. From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
10: Hey, प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा
11: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
12: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
0: Up next,
2: Anisa Nasir with the Big Show on Leica Gold.
13: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल. Every weekend 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: दिल का आलम आप ना बताएं मुझे, क्योंकि दिल का आलम जब इस तरह का होता है तो खुद ही बहुत कुछ कह देता है। आपका मुस्कुराना, आपकी कैफियत, उस वक्त जो आपकी हालत हो रही होती है तो पता चल रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, या फिर शायद उसने नज़र मिला के यूं हैरान कर दिया। ये साफ पता चल रहा होता है कि किसी ने नज़र मिला के यूं हैरान कर दिया, पत्थर को अपने प्यार से इंसान कर दिया। आया वो घर तो घर की फिजा ही बदल गई, दिल था उदास, खुशियों का सामान कर दिया। और मैं भी आपकी खुशियों का थोड़ा सा सामान लेकर हाजिर हूँ पूरे 10 बजे तक। अनीसा नासिर कहते मुझे, आपको क्या कहते मैं आपसे जानना चाहूंगी, और गीतों में क्या कॉमन है ये भी आप ही बताएंगे। मैं तो आराम से बैठ के बस इधर की उधर की गपशप।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128.4 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank.com. Locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: अच्छा भाई, काम मेरा आप तो पहले ये कर दें कि पहले गीत के दौरान दो जो मतलब जवाब आए उनमें से एक सही एक गलत है। एक जवाब है फवाद जी का और एक है मनु जी का। अब दोनों के रिकॉर्ड देखते हुए, जहन में रखते हुए, आप जरा गेस कीजिए कि किसका जवाब सही होगा।
2: लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
3: क्योंकि सास भी कभी।
4: This part of the show is sponsored by क्योंकि सास भी कभी बहू थी। Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. One performer,
5: countless personalities,
4: a whole universe of entertainment.
5: Sunil Grover, live UK tour 2026.
4: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
7: Two businesses.
8: Same town.
7: Same service.
8: One appears on page one of Google.
7: The other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
9: ये तो बताओ, कोई पता चला?
10: गुरु गुरु,
11: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
9: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
11: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November। टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM. Exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
14: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
0: मीनार ज्वेलर्स। अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
15: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन।
16: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
17: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bata sakta nahi kitna laga hai. Bata sakta nahi kitna laga hai. Koi pehli dafa achha laga hai. Ye duniya to kisi ki bhi nahi hai. ये दुनिया तो किसी की भी नहीं है, मुझे एक आदमी दुनिया लगा है। दिल की इस दहलीज तक, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आप सबने एंजॉय किया ये जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने कोई तुक्का या गैस या तीर चलाया ही नहीं कि मनु जी का जवाब सही होगा या फवाद जी का। तो आपको बता दूँ कि मनु जी का रिकॉर्ड दिन ब दिन ख़राब होता चला जा रहा है, तो उन्होंने जो जवाब दिया बिल्कुल सही नहीं है, सही जवाब है फवाद जी का। और मैं यही कहूँगी कि तुक्का तीर लगा या आपने बहुत दूर अंदेशी से काम लेते हुए जो वर्ड मुझे बताया, एकदम सही है फवाद जी, कंग्रेचुलेशंस। ताहिर जी, मकबूल जी, ओम प्रकाश लाल जी, मनजीत संगर जी, नौशीन खान जी, वीना जी, अवतार आसी जी, वीनी जी, अमित पटेल जी, मिसेज पेकी चियांग, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। तारिक राहिल जी कहते हैं, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, हमको अपनी खबर नहीं जाना, तुम समाने की बात करते हो। बिल्कुल सही है तारिक साहब। मीनाक्षी ब्रह्मभट्ट, रुखसाना अफजल जी, उल्लास जी, उमर जी, संध्या भावसर जी, वेल डन। और अब मैं वेल डन कहना चाहूंगी दिवाली स्टोरी की पूरी टीम को। लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू पार्टनर अप विद सनातन इवेंट्स फॉर दिवाली स्टोरी विच अराइव्स एट ओवो वेम्बले एरिना ऑन संडे 27 सितंबर। दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे 4:30 PM विद स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस जो है वो शुरू होगी फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। टिकट्स अपनी जल्दी से बुक कर लीजिए फ्रॉम diwalistory.com.
0: Feel Good Classics with Anisa Nasir.
2: बड़े मजे मजे के जवाब आ रहे हैं। तोची जी, बिल्कुल सही, दिल ही छीन कर लेगी आप मुझसे। हरीश रुडा जी, बेहद शुक्रिया, जवाब तो नहीं, आपने वैसे हिस्सा लिया।

0: 1968 की एवरग्रीन फिल्म के एवरग्रीन सॉन्ग्स उन्हीं में से एक संघर्ष से हमने आपको सुनवाया और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा विभाकर जी आपका मैसेज गार्डन में सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप ही के लिए है सब कुछ। और लीजिए एक आप इस गीत को सुन के याद आया, जब दिल से दिल टकराता है, जब बैट और बॉल टकराता है तो क्या होता है, क्रिकेट मैच होता है। तो कैच कीजिए लाइव एंड एक्सक्लूसिव क्रिकेट, और ये क्रिकेट एक्शन जो है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन जियो हॉटस्टार। 3 1-day इंटरनेशनल्स फ्रॉम संडे 13 सितंबर अंटिल थर्सडे 17 सितंबर फ्रॉम 2:50 PM। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Anisa Nasir with The Big Show.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
5: बिग बॉस में इस बार मिलेगा बर्तन और एक्स्ट्रा जीवन दान, तब हंस तो मेरी जान।
6: बिग बॉस सीजन 20 एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच अ लाइव फीड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस एक्सक्लूसिवली ऑन जियो हॉटस्टार। Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to Visit heraldplastic.com.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
7: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
8: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
7: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
9: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11.
11: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place.
11: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
13: Get ready, cricket fans. The T20 battle is on. Team India takes on Afghanistan in 3 explosive T20 internationals from 13th to 17th September. Big sixes, flying stumps and edge of the seat action. Live from 2:30 PM exclusively on Jio Hotstar UK. Download and subscribe now.
14: Sonatours.co.uk. 13 days Vietnam and Cambodia departures every month September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
15: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: थैंक यू फॉर 5 ग्लोरियस इयर्स लाइका गोल्ड.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: One British pound aaj aapko dilaa sakta hai 374.7 Pakistani rupees, 87.7 Afghan Afghani, 129.3 Indian rupees, 166.2 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
0: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: The gold is currently trading at £101.98 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: अब सोने से भी कीमती चंद नाम शामिल किए लेते हैं जिन्होंने सही जवाब भिजवाया है हमारी आज की थीम का। गीता हर्ष जोशी जी, अरुणा शाह जी, अमिता जी, गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, इरफान जी, गुल जी, किरित जी और नंबर एंडिंग विद 438।
1: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर।
2: आपके जवाब बिल्कुल सही है, सिवाय मनु जी के आज किसी ने भी गलत जवाब नहीं भिजवाया। इतना तो आसान है। और सईदा जी, वेलकम टू द शो। कोई पंजाबी शायरी आपने भिजवाई है, पेंट मेरे वीर दी ते शर्ट पा बशीर दी ते टाई चाचे नजीर दी। देखते हैं, शामिल करती हूँ।

0: This is Anissa Nasir with The Big Show. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: माया भाईनी मौज माणवा थई जाओ रेडी माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो माया भाई आहिर जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज
3: वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 3 10 स्टोन फील्ड वे साउथ राइसलीप HA40JS
2: टिकट्स 30, 40 and 50 pounds लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड
3: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509
4: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
6: Safal Travel, auto protected.
7: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali story, the journey of Ram and Sita.
8: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
11: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
14: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
0: Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m.

अपनों के दरमियान पराया रहूंगा क्या, इतने बड़े हुजूम में तन्हा रहूंगा क्या। तूने नजर बदल के रवैया बदल लिया, मैं तेरे साथ वैसे का वैसा रहूंगा क्या। दिल को मन रहा गीतों में नीलेश जी, फरजाना जी, अमित जी, बिल्लू बादशाह जी, सईदा जी, दिनेश पोपट जी और महेंद्र पटेल जी, आपके जवाब भी बिल्कुल सही हैं। रानी जी आप मिल गई मनु जी के साथ, उनका भी जवाब गलत, आपका भी गली कोई नहीं। L-Y-C-A. This is

0: गणपति बप्पा मोरिया, मेरे उन सभी लिसनर्स के नाम जो आज ये पावन त्योहार मना रहे हैं, हार्दिक बधाई आप सबको। ये था प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का आगाज। बेहद शुक्रिया आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। आई एम सो हैप्पी कि आपको दोनों ही भजन अच्छे लगे। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ही देर में मैं आप तक चंद अल्फाज पहुंचाऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा गीत है। लेकिन पहले
1: We're five. Leica Gold is five. Thank you. Competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.4 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBI uk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और बहुत बहुत बहुत ही आसान और बहुत ही पॉपुलर गीत जो है, बहुत ही फेमस आपकी, मतलब मैं क्या कहूँ कि इससे ज़्यादा आसान हो नहीं सकता था। बादल बरसे कोई ना जाने दिल की लगी, बादल बरसे कोई ना जाने दिल की लगी, कौन सा गीत है?
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
1: Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai. Every day at 7 p.m. on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas. He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
4: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। What's your travel mantra?
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
9: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
8: Available at ethnic grocery store near you. गणपति बाप्पा मोरिया.
10: लड्डू एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम हर मौके पर सबसे पहले आता है. पास हो गया, लड्डू खिलाओ. नौकरी लग गई, लड्डू खिलाओ. अरे सगाई कर ली, लड्डू नहीं खिलाए. और शादी का लड्डू तो खा के भी पछताना और बिना खाए भी पछताना, तो खाइए और पछताइए. कोई भी काम हो, सबसे पहला नाम लड्डू का. जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड्डू पसंद है उन गणपति जी को जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है. लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.
11: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Itne romantic geet ke baad ye banti to nahi hai, badi mazahiya si shayari hai, lekin bade pyar se bhijwai hai Saida ji ne to shamil kiye lete hain. Pata nahi kabhi aapne bhi khela hoga ki nahi, kikli kali di pag mere veer di dupatta mere pai da. एंड आगे पता नहीं किदा फिटे मुँह वगैरह वगैरह. तो हम तो वो नहीं कहेंगे, हम तो वो कहेंगे जो सईदा जी ने लिखा है कि किकली कलीर दी पेंट मेरे वीर दी शर्ट पा बशीर दी ते टाई चाचे नजीर दी कोट वड्डे भाई दा लंडे तो लियाई दा फिट शिट करा के धोबी तो धुआई दा सेंट शेंट लाई दा शौक नाल पाई दा बस 200 रुपए विच बाबू बन जाईदा.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
0: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
2: जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें South Old Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. आप सभी जानते हैं, reminder की जरूरत है. Contact South Old Travel today on 0208-574-8410. South Old Travel is A-Tot protected.
0: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. This is Anisa Nasir on Leica Gold, Greater London. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: अरे अरे अरे, मुझे छेड़ेगा अकेले में। मुझे वो उस लड़की की याद आ गई जो ऑफिस देर से पहुंची, तो बॉस ने पूछा कि भाई इतनी देर से क्यों आई। तो सर वो पता, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। पीछा कर रहा था तो तुम क्यों लेट हुई? वो इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तू मुझे छेड़ेगा अकेले में। मुझे भी शौक ना था दास्तां सुनाने का, फराज जी कहते हैं। मुझे भी शौक ना था दास्तां सुनाने का, फराज उसने भी पूछा था हाल वैसे ही। लेकिन मैं दिल से पूछ रही हूँ किद्दां की मैं किंज। अगर आप मिस कर गए हैं हमारे उल्टे पुल्टे के अल्फाज को, तो मैं दोहरा रही हूँ आपके लिए। बादल बरसे कोई ना जाने दिल की लगी। कविता कुमार जी रह गए हो तुसी आज, कमाल है। मुझे आपसे तो मतलब नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि मतलब कभी इंसान कुछ सोच और रहा होता है, जहन में कुछ और आ रहा होता है और लिखा आपने कुछ और दिया हो। आपका जवाब गलत है और सलमा जी आपका भी जवाब गलत है। ना तो ये गीत है दिल का खिलौना हाई टूट गया, और ना ही मैं तो तुम संग नैन मिलाकर। ये तो वो गीत है जिसे सबसे पहले मीनाक्षी ब्रह्मभट जी ने बूझा, रानी ऑफ द आवर। फरजाना जी, गीता हर्ष जोशी जी, रानी जी सलाव से, सईदा जी बड़ी चलाक हो गई, उल्लास जी, कुलबीर सिंह जी, तोची जी और पी आर ए करसन पिंडोरिया जी। करसन पिंडोरिया जी मुझे वापस आए 2 वीक हो गए। मैं रात तकती थी रोज आपके मैसेज की, मैं समझी भूल गए आप हमें, लेकिन नहीं आप नहीं भूले, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। उमर जी आप अब सेकंड आवर में भी, वो जी मेरी तो प्रमोशन होगी, इसका मतलब है 1 घंटा सुनने के बाद कहा करते हैं कि अच्छा भी अब कल मुलाकात होगी, आज तो अभी तक मुलाकात जारी है। कैरी ऑन।
1: Like a gold ace 5. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 aaj aapko dil la sakta hai, 129.3 Indian rupees, 87.6 Afghani, 374.4 Pakistani rupees, 166.1 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Like radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £101.98 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और हमारे वो लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, उनको गणपति बप्पा मोरिया कहते हुए, गणेश चतुर्थी की बधाई देते हुए उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। विजय गुडोरी जी घूम फिर के मंदिर से होकर वापस आ गए, आंखें टीवी पर, कान रेडियो की जानेब। बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है ऑनेस्टली, थैंक यू वेरी मच। आपने मिस कर दिए 2 बहुत ही प्यारे प्यारे भजन, लेकिन चलिए कोई बात नहीं।
1: This is Like a Gold, non-stop classics. Punjabi Tadka with Anisa.
0: Listen back पर आप सुन सकते हैं whenever, wherever. और लीजिए दोस्तों, पंजाबी तड़के में शामिल करने जा रही हूँ मैं अज़रा जहाँ जी की आवाज़। क्या प्यारी शख्सियत हैं, मलिका तरन्नुम नूर जहाँ जी की नीस हैं, ये रिश्ते में गाती भी बहुत प्यारा है, पर्सनैलिटी उससे भी अच्छी, प्यार करने वाली मिठी सी, बहुत ही मीठी है। जीते रहो अजरा जी तुसी।

0: दिल दियां लगियां नूं रब जानदा। मजा जनता फिल्म का नाम दिल मेरा ये तख्त हजारा जिते रांझण माही वसदा मेरे रोणियां दे विच रोंदा ते मेरे हासियां दे विच हसदा।
1: This is Anisa Nasir with the Big Show. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
3: Daddy!
2: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
4: Har meal ko banao thoda aur special with Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. And right now, make your shopping grand with these special offers at independent retailers. 5 kilograms, just 8.96. 10 kilograms, only 16.96. And the big 20 kilograms pack, just 29.96. Perfect for everyday meals, family get-togethers or har special celebration. Hurry, offers ending soon. Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. Make everyday grand.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग ज्वेलरी to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
9: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Like our radio और Like our gold, आपकी आवाज बन सकते हैं। On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com।
1: Anisa Nasir with the Big Show, weeknights from 7 p.m.

0: राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, या तू आ जाए या हम ठिकाने लग जाए। ये था मिस्ट्री गीत जिसे लुबना जी लाहौर से आपने भी पूछा, बेहद शुक्रिया। और रानी जी हमेशा मुझे शायरी भिजवाती रहती हैं, इस टाइम की वजह से मैं शामिल ही नहीं कर पाती हूँ। कहती हैं बहुत अजीब हैं बंदिशें मोहब्बत की, कोई किसी को टूट कर चाहता है और कोई किसी को चाह कर टूट जाता है। क्या बात है। और अगली जो बात आपने लिखी है मैं उससे इत्तेफाक ही नहीं करती यार, मतलब आप जो मर्जी किए जाओ लेकिन हम तो आपको प्यार ही करेंगे। क्यों थोड़े सानू कोई नहीं, तो हानू प्यार नहीं है तो सानू क्यों होएगा फिर। देखो जी, जो प्यार करता है उसको प्यार भी तो चाहिए, उसको भी तो चाहिए होता है ना, उसका भी दिल चाहता है कि कोई उसके नाज नखरे उठाए, थोड़ी सी ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी मोहब्बत करे। नहीं, कहने वाले कहते हैं कुछ देर इंतजार रहा फिर नहीं रहा, कुछ देर इंतजार रहा फिर नहीं रहा, दिल सख्त बेकरार रहा फिर नहीं रहा, जब तक कि उसको और कोई मिल नहीं गया तब तक वो मेरा यार रहा फिर नहीं रहा, तो फिर हम भी क्यों रहेंगे यार। लीजिए दोस्तों, गीत सुनते सुनवाते बातें करते कुरते हम पहुंच गए खबरों के बेहद करीब, खबरों के उस पार। मुझे ज्यादा मत करवाइएगा इंतजार वरना मिस कर जाएंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत। पंखा जोधास जी और अलका याग्निक जी की आवाजों में ये प्यारा सा गीत आप सबके नाम करते हुए, वेरी गुड इवनिंग एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।
1: थैंक यू फॉर 5 ग्लोरियस इयर्स लाइक अ गोल्ड।

और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मस्त मस्त गीत ने आपको मस्त किया होगा। बहुत ही प्यारा गीत फ्रॉम द मूवी काला पत्थर 1979 की फिल्म। और आज खास तौर पर इसे सुनवाने की वजह कि हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं शशि कपूर जी, बलबीर राज कपूर जी। एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, इतनी बेशुमार हिंदी फिल्मों में काम किया, उसके साथ साथ इंग्लिश फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। And I have to say ke one of my most favorite actors he was, he is and he will be. पता नहीं क्यों, शायद ये इंसानी फितरत है कि हम चाहते हैं कि हम जिसे पसंद करते हों, ख़ास तौर पर वैसे तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, ताक़यामत रखे, लेकिन अब वो जो एक कुदरत का अमल है वो तो चलना ही होता है। जैसे वक्त के साथ साथ इंसान पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन हमारे जहन में उनकी वही सूरत रह जाती। मैंने अक्सर ख़ास तौर पर लेडीज़ को ये कहते सुने, हो फलां को देखा था कितनी बुढ़ी लग रही थी, अरे उसकी स्किन को क्या हो गया। अच्छा, और ये अपनी हम उम्र के बारे में बातें हो रही होती हैं। अरे बहन, शीशा भी है घर में, खुद को भी देखो, हम सब भी बदलते हैं वक्त के साथ। जैसे आप किसी को कहते हो, वो भी हमारे बारे में कहते होंगे। तो एज एन एक्टर, मतलब फैन कहना चाहिए, एज एन एक्टर्स फैन, किसी भी फील्ड में कोई हो पर्सनैलिटी जिसको आप बहुत सराहते हो, तो दिल नहीं चाहता कि कभी वो उम्र के साथ ढलें या कभी वो दुनिया से जाएं। होता है ऐसा, होता है ना? I'm sure के होता होगा। मैं अकेली ही नहीं हूँ ऐसे। Feel good track brought to you by Dairy Valley. Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और लीजिए भी, तारिक साहब ने तो मेरी बात को दिल से ही लगा लिया. मेरा कहने का मतलब, अब मैं क्या समझाऊं आपको, ऐसा नहीं था कि मोहब्बत को पाना ही मोहब्बत होता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपको छोड़ के जाए डिलिबरेटली, मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरी वो मुराद नहीं थी जो आपने समझी. मुझे पता है बड़े दुखियारे सुन रहे हैं इस वक्त जिनको मोहब्बत नहीं मिली, कहते लो जी मोहब्बत मिल जाती तो फिर ये दास्तानें कहाँ से मिलती. सही कह रहे हैं आप, मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है और मोहब्बत ही रहती है, लेकिन किसी के मतलब बुरी तरह आपको ठुकराने पर या आपको मोहब्बत के बदले में, फिर आप कहेंगे मोहब्बत का बदला नहीं होता. मतलब आपको अगर रिस्पेक्ट ना मिले, आपकी मोहब्बत की कदर ना हो, मिलना ना मिलना तो वो मुकद्दर की बात है, ये तो किस्मत के खेल हैं. तारिक साहब प्लीज चेयर अप, ऐसी कोई बात नहीं है. लीजिए भाई, अब हम आप तक एक मैसेज पहुंचाए जो कि वाकई बड़ी बात है. जी हाँ, बिग बॉस इज बैक, 20th सीजन बिग बॉस का, होस्टेड बाय सलमान खान. वीकेंड का वार कल पहला था और मुझे बड़े जरा थोड़े नर्म लगे सलमान खान जी, वरना तो वो तैयार रहते हैं डांटने के लिए, लेकिन चलिए एनीवेज हम आपको बता दें कि शो जो है खुद देखिएगा, एयर किया जाता है एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार इज स्ट्रीमिंग एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद द लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस से. जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी, तो याद रखिएगा और जरूर देखने की कोशिश भी कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी.
0: ये है लाइका गोल्ड. Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 PM with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold. This is Anisa Nasir with The Big Show. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
6: Get ready, UK. Sunil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
7: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
6: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
6: For more information, contact 07585-801-801. Official radio. Your partner, Leica Radio Network.
8: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा वेन्यू 10 Stonefield Way फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 साउथ राइसलिप HA40JS रोज कथा पछी महाप्रसाद पोथी यात्रा कपिल नारायण कथा कृष्ण जन्म गोवर्धन लीला रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-22-87509.
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio.

0: कोशिश भी मत कीजिएगा दामन छुड़ाने की. मेरे जाने के बाद गोल्डन नाइट का इतना खूबसूरत चुना हुआ म्यूजिक आप कैसे मिस कर सकते हैं. दिले मुस्तर से कह दो थोड़े थोड़े सब मजे चखे, जरा बहके, जरा संभले, जरा तड़पे और जरा ठहरे.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 374.3 Pakistani rupees, 129.2 Indian rupees, 87.5 Afghan Afghani, 166 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £101.98 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: और लीजिए भी अभी हमारी बात हो रही थी उस्मा जी से और उस्मा जी बात करते करते अचानक कहने लगी वो याद आया मेरी बहन जो है ना साजदा आज उसका जो है वो बर्थडे है. मेरी बहन कभी मुझे इस तरह कहना कि हाँ याद आया तो सच्ची आपको नहीं पता कि मैं उसका क्या हाल करूं. लेकिन चलिए आपको याद तो आ गया ना, कम से कम याद ना आता तो क्या होता, ज़रा सोचिए अंदाज़ा कीजिए. तो हम अगला गीत जो है वो बहुत सारी मुबारकबाद के साथ आपकी बहन के नाम करते हैं, ठीक है.
1: From Lollywood with love, with Anisa.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: वन एंड ओनली अहमद जहांजेब जी, खास तौर पर इस वक्त गा रहे थे नजमा जी के लिए जो आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। और नजमा जी जरा तैयार हो जाइए मांगने के लिए, वो खुद ही तो कह रही है ना, हमारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही है, तो अच्छे अच्छे सूट जूतियां ज्वेलरी मांग लीजिए। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते, बर्थडे पर ही चांस मिल सकता था आपको। आप दोनों को एक दूसरे का प्यार मुबारक हो। बहन तो बहन ही होती है भाई, और बहन जैसे रिश्ते का कोई नेमल बदल है ही नहीं। लीजिए दोस्तों नेमल बदल तो लायका गोल्ड का भी नहीं, सुनते रहिए सुनवाते रहिए लायका गोल्ड को 24 घंटे सातों दिन। गोल्ड नाइट का चुनावा म्यूजिक सुनिएगा और ब्रेकफास्ट में हाजिर रहेंगी काजल जी। शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 PM. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
3: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Southall Travel.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel can take you there.
5: Southall Travel, at all protected.
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
6: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र
6: शीघ्र।
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
1: टू बुक कॉल 0208 514 5400. Book online at Eventbrite.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11.
2: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place.
10: 11, 11.
2: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
12: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true-life adventure.
13: I left behind everything I knew.
12: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
13: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
12: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
14: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
15: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: again.
1: This is Like a Gold. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: फंक्शन रखा हुआ है।
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02033736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर Travel Mantra.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
8: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
10: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: नायका गोल्ड।
1: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
2: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
4: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
8: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द family in times of sadness and grief Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals at Canton Road in West London and Ilford in East London Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English Hindi Gujarati Marathi Tamil and other languages contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344 a 24 hour line
9: Laika Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
10: रात भर न थमे, न रुके, क्लासिक नगमे, आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: Gold Nights. Hit tracks non-stop throughout the night. Like a Gold on 10:35 a.m.
1: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
5: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
6: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।